0: कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेडे वेब 374.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

मेरी हर उलझन दा हल तेरे दर ते है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकदी हाँ, बाकी प्रभु सब तेरे हाथ विच है।

0: सवा दो बजे तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीराली। इस प्रोग्राम दे दौरान खबरां आपो अपने समय ते नशर कीतियां जाणगियां। दोपहर 2:30 बजे रंगली धरती प्रोग्राम तहत अज तुसी निरंजन सिंह नूर ते टाडियां दे गायक कविश्री सुनोगे। शाम 4:02 ते तुसीं सुनोगे प्रोग्राम सिरजना। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसीं गुरतेज सिंह कोहार वाला दे नाल सुखजिंदर सिंह दी कीती गलबात सुनोगे। श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण तुसीं सरवण करोगे शाम 4:30 बजे। साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसीं सरवण करोगे शाम 5:30 बजे। शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम पेश किया जाएगा। अज के इस प्रोग्राम दे विच काम दियां गल्लां दे नाल नाल सोनी मक्की दी काश्त इस बारे जानकारी दिती जाएगी। संगीत रूपक भी सुनाया जाएगा। खेतीबाड़ी संबंधित गल्लां बातां दे नाल मनोरंजन लई गीत संगीत भी पेश किया जाएगा। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। शाम 7:40 ते वगदे पानी प्रोग्राम तहत तुसी वीरपाल कौर तो कविता पाठ सुनोगे। मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देशवासियों लिए प्रसारण मन की बात का पंजाबी रूपांतर का मुड़ प्रसारण तुसी रात 8 बजे सुनोगे। 9:15 बजे साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे स्पॉटलाइट। 9:30 बजे अनुगूंज अते रात 10 बजे तुसी साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा तो बाद दोपहर 3:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अते रात 11:10 ते समा रहेगा प्रोग्राम सौगात दा। एसी परचे तहत साढ़े एस मीटर तो अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उस दे प्रसारण समय दा वेरवा। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडिया वेब 343.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स ते 6:55 हो जा रहे ने। हुण तुसी संस्कृत विच समाचार सुनोगे।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह श्रीलाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहार

एक शब्द है मोहब्बत, इसे करके देखो तो तुम तड़प ना जाओ तो कहना। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो तुम हार ना जाओ तो कहना। एक शब्द है वफा, जमाने में नहीं मिलती कहीं ढूंढ पाओ तो कहना। एक शब्द है आंसू, दिल में छुपा कर रखो तुम्हारी आंखों से ना निकल जाए तो कहना। एक शब्द है जुदाई, इसे सहकर तो देखो तुम टूट कर बिखर ना जाओ तो कहना। एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर तो देखो सब कुछ पा ना लो तो कहना। सोनी सवेर प्रोग्राम सुनने वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते अदाब। ते इस मनोरंजन परे जानकारी परे सफर दी कर दिती है असी शुरुआत। हो जाओ तुसी तैयार मेरे नाल, ठीक है सफ़र 8 बजे तक दा तय करन दे लई। बहुत सारिया गल्लां बातां, बहुत सारिया जानकारियां ते बहुत सारिया शख्सियतां दे जिक्र दे नाल, उन्हां नूं मिलाउण दे नाल लै के तुहाडे नाल इह सिलसिला शुरू कर दित्ता है जी। दोस्तों जिंदगी दे विच धन दौलत शोहरत ते कामयाबी तां बहुत लोग कमा लैंदे ने, पर सब तों वड्डी कमाई हुंदी है रिश्तियां दी। रिश्ते प्यार नाल चलदे ने, हंकार नाल नहीं। रिश्तियां दा बंधन बहुत नाजुक हुंदा है, इस नूं मजबूत करन वाला जेकर कोई तत् है ना वह है प्यार, ते इस नूं कमज़ोर करन वाला जेकर कोई तत् है तो वह है हंकार। प्यार सानूं निमर बनाउंदा है जदकि हंकार साडे विचकार कंधा खड़ियां कर दिंदा है। प्यार विच असीं एक दूजे नूं समझण की कोशिश करदे हाँ, एक दूजे दीआं खुशियां अते दुखां दे विच साथ निभाउंदे हाँ, पर जदों हंकार साडे उत्ते हावी हो जांदा है ना तो फिर मैं मेरा सब तो अगे आ जाता है तो रिश्तों के बीच दूरियां पैदा होन लग जांदियां ने। प्यार जोड़ता है, स्वीकार करना सिखाता है, देन की भावना पैदा करता है, जबकि हंकार गलबात समझ और सतिकार नू खत्म कर देता है। दोस्तों मतभेद तो हर रिश्ते विच हो सकते हैं, पर जिथे प्यार होंदा है ना उत्थे हर समस्या का हल भी निकल आता है। हंकार सिर्फ दूरियां बढ़ाता है तो रिश्तों नू कमज़ोर करता है। इसलिए अज अपने आप नाल एक वादा करो कि असी अपने रिश्तियां दे विच प्यार निम्रता अते सतिकार नू जगह देवांगे, हंकार नू नहीं। याद रखो रिश्ते जितने लई नहीं निभाउण लई हुंदे ने, ते ए प्यार दे नाल निभदे ने हंकार दे नाल नहीं। आओ हुण प्रोग्राम दा आगाज़ इस खूबसूरत गीत दी जिहड़ी धुन दे नाल तुहानू कराया है ना जी, आओ इस मिठे जे प्यारे जे खूबसूरत गीत नू मुहब्बत ते प्यार नू बयान करदे इस गीत नू सुनदे आ ते प्रोग्राम दा ए सफर शुरू करदे आ।

दोस्तों, पैसा तो कोई भी कमा सकता है ते अपने खजाने भर सकता है, पर जो दूजियां दे चेहरियां ते मुस्कुराहट लिया है ना, वो सचमुच अमीर है। बैंकां दे भी तां खजाने भरे हुए हुंदे ने, पर वो मुस्कुराहटा नहीं दे सकते। एक शहर दे विच इक बहुत ही अमीर सेठ रहिंदा सी, वो कई फैक्ट्रियां दा मालक सी। एक शाम वो अचानक बहुत बेचैन हो गया। डॉक्टर ने उसनू सद्दिया गया, सारियां जांचां टेस्ट करवाए गए, पर कुछ भी ना निकलिया। उस दी बेचैनी दिन ब दिन वधदी जा रही सी। उसनू समझ नहीं सी आ रहा है कि उहदे नाल हो की रहा है। एक रात वो इस तरह बेचैन इधर उधर करवटा बदल लिया, नींद दीआं गोलियां भी खा लईआं, पर नींद उसनू आउण दे लई तैयार है ही नहीं सी, ते ना ही उसकी बेचैनी जिहड़ी आ ओह घट रही सी। तकलीफ वधन दे कारण उह रात नू 3 वजे घर दे बाग दे विच घूमन लग गया। घूमदिआं घूमदिआं उसनू लग्गिआ है कि बाहर थोड़ी शांति है, तां उह सड़क दे उत्ते पैदल निकल गया। चलदे चलदे उसदे मन दे विच हज़ारां विचार आ रहे सी। हुण उह घर तों काफ़ी दूर निकल गया सी ते थकावट कारण इक चबूतरे उत्ते बैठ गया। उसनूं थोड़ी शांति मिली तां उह आराम दे नाल बैठ गया। इन्ने विच इक कुत्ता आया, उसने उसकी एक चप्पल चुक के भज गया। सेठ ने देखा तो वह दूजी चप्पल पा के कुत्ते दे पिछे दौड़िया। कुत्ता नेड़े ही बने एक झोंपड़ी दे विच चला गया। सेठ भी उसके पिछे गया। सेठ नूं नेड़े आउंदे देख के कुत्ते ने चप्पल उत्थे ही छड़ दित्ती ते चला गया। सेठ ने चैन दी साह लई ते अपनी चप्पल पाउण लगा। उत्थे उसनूं किसे दे रोण दी

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: जी दोस्तों, आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले तुसी प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच बने हुए ते इस प्रोग्राम दे विच जिवें कि तुहानू बहुत सारिया जानकारियां दित्तियां जांदियां ने, बहुत सारिया जिंदगी नाल जुड़ियां गल्लां बातां कीतियां जांदियां ने ते अज दे खास दिनां नू मनाउण दे नाल नाल उन्हां संबंधित जानकारी जां जागरूकता फैलाउणा भी जिहड़ा आ साडे इस प्रोग्राम दा मकसद हुंदा है। ते इस सब करदे हुए जिवें इतिहास दे विच असीं पहला भी जाणिया कि अज असीं विश्व पद्धर दे उत्ते विश्व तंबाकू निषेध दिन जिहड़ा आ उह मना रहे हां। ते इस दिन बारे होर जानकारी प्राप्त करन दे लई, तंबाकू दे उत्ते जानकारी प्राप्त करन दे लई अज साडे नाल इक विशेष मेहमान मौजूद ने, जो मानसिक सेहत अते नशा मुक्ति दे खेतर दे विच अपना महत्वपूर्ण योगदान पा रहे ने। डॉक्टर संदीप कुमारी जी, जो कि सरकारी नशा छुटाऊ अते रिहैब केंद्र हुशियारपुर विखे क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट अते काउंसलर वजों अपनियां सेवावां निभा रहे ने, मानसिक सेहत प्रति लोगों नूं जागरूक करन ते समाज सेवा दे खेतर विच उहनां दे शानदार योगदान लई पंजाब दे सेहत मंत्री वल्लों उहनां नूं बेस्ट काउंसलर दे डिस्ट्रिक्ट

0: ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੱਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਹਾਂਡਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।
1: ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜੇ ਹਮਾਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੇ।
0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
6: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी

0: और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों

0: को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गिब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70

0: से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है। 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan, while the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational

0: Abhishek Banerjee mobbed during visit to South. 24 Parganas are the front page stories in most dailies. The Statesman informs Amit Shah on a visit to West Bengal seeks close watch on radicalization centers on border. Newspapers report U.S. Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a critical anchor in Indo-Pacific region. Financial Express headlines India helps maintain balance of power, while the Sunday Express says no China hegemony. Hegseth flags co-production of Javelin anti-tank missile with India. The Tribune informs Vinesh fails to make Asian Games cut, promises to return to the mat. Economic Times says EV sales in fast lane, but Motor Town treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric, as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज को अपनी बंदरगाहों तक सीमित रहने मजबूर किया। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लिए पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन से बरामदी महसूल में सोध की है। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन भारत के पांच दिन दौरे से कल नवी दिल्ली पहुंचे। इस तों पहले उन्होंने गया के महाबोधि मंदिर में पूजा की। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। यह हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 134वां एपीसोड होएगा। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी ते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क, आकाशवाणी खबरां दी वैबसाइट ते न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप ते प्रसारित किया जाएगा। इसनू AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री दे दफ्तर ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे यूट्यूब चैनलों ते भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण तो तुरंत बाद प्रोग्राम नू खेतरी भाषाओं विच भी प्रसारित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज को अपनी बंदरगाहों तक सीमित रहने मजबूर किया। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटनी समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान पाकिस्तान से दबाव पाने में समुद्री फौज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शौर्य वाटिका ओपन एयर नेवल अजायब घर है। पहलगाम दहशतगर्द हमले का बदला लैण लई पिछले साल 7 मई नूं ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया सी। इस ऑपरेशन दौरान भारतीय फौज ने पाकिस्तान अते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर विच कई दहशतगर्द ठिकाणे ते सटीक हमले किए सन।
3: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा

0: ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
1: समुद्री फौज के मुखी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान भारतीय समुद्री फौज ने लड़ाई की तैयारी, संचालन समर्थावां अते हमलों नूं नाकाम करन दी काबिलियत का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि तिना सेनावां विचकार तालमेल बहुत महत्वपूर्ण सी, जो संयुक्त संचालन समर्थावां की वधदी महत्ता की पुष्टि करता है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीण नाल मरन वाले की गिणती 21 तक पहुँच गई है। इन्हां विचों 7 लोग पुणे के जदों के 14 पिंपरी चिंचवाड़ और उरली कंचन इलाकों के ने। इस केस के संबंध में हुण तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने लापरवाही लई 22 अधिकारियों को मुअत्तल कर दिता, जिन्हां विच 9 पुलिस मुलाजम और राज आबकारी विभाग के 13 मुलाजम शामिल ने। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल ते हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल विच सोध कीती है। इस कदम दा उद्देश पछमी एशिया संकट तो पैदा हुई अनिश्चितता दरमियान पेट्रोलियम उत्पादों की लोड़ींदी घरेलू उपलब्धता नूं यकीनी बनाउणा है। वित्त मंत्रालय वल्लों जारी नोटिफिकेशन अनुसार पेट्रोल की बरामद ते प्रति लीटर 1.5 रुपए ड्यूटी लगेगी, जदों के डीजल की बरामद ते 13.5 रुपए प्रति लीटर ड्यूटी तय की गई है। हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल 9.5 रुपए प्रति लीटर होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बरामदी महसूल, जिस विच विशेष वाधू आबकारी ड्यूटी और सड़क के बुनियादी ढांचा सैस शामिल ने, इस साल 27 मार्च को लागू किए गए सन। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन दी औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर पंद्रवाड़े इन्हां दी समीक्षा की जाती है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू खपत लई पेट्रोल ते डीजल ते मौजूदा आबकारी महसूल दरां विच कोई बदलाव नहीं किया गया। सोधियां दरां कल तो लागू होणगियां ते अगले पंद्रवाड़े लई लागू रहणगियां। सरकार ने भलके तो 31 अक्तूबर तक कपाह की दरामद ते कस्टम ड्यूटी तो अस्थाई तौर पर छोट दे दित्ती है। कपड़ा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन विच कहा कि फैसला कपाह किसानों के हितों नूं ध्यान विच रखदिआं लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कपाह के ऑफ सीजन दौरान लागू किया गया यह उपा कपड़ा सनत लई कपाह की ढुकवीं उपलब्धता नूं यकीनी बनाएगा, छोटे ते दरमियाने उद्यमों का समर्थन करेगा ते भारतीय कपड़ा सनत की मुकाबलेबाजी नूं मजबूत करेगा। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सेंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। तो यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन कल शाम भारत के 5 दिन दौरे ते नवी दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय विदेश राज मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे ते उन्हां दा स्वागत किया। इस तो पहला राष्ट्रपति बिहार गए ते गया दे महाबोधि मंदिर विच पूजा की। उन्हां दे नाल कई मंत्री, सीनियर अधिकारी ते सफारती आगुआं दा एक उच्च पदरी वफद भी आया है। राष्ट्रपति दे अहुदे ते रहिंदिआं इह उन्हां दा पहला भारत दौरा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन नाल मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने लंबे समय तो चल रहे दवल्ले सहयोग नूं होर मजबूत करने लई म्यांमार दे राष्ट्रपति की सकारात्मक पहुँच की शलाघा की। म्यांमार दे राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात करके दोहां देशां विचकार इतिहासक अते सभ्याचारक संबंधां नूं मजबूत करन ते चर्चा करनगे। अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हैक्सथ ने भारत नूं खेतरी स्थिरता दा एक मुख थम दस्सिया है। सिंगापुर विच शंगरीला डायलॉग विच उन्होंने भारत नूं हिंद प्रशांत खेत्र विच सुरक्षा ते संतुलन दा एक महत्वपूर्ण आधार करार दिता। श्री हैक्सथ ने भारत दे फौजी आधुनिकीकरण ते रक्षा उद्योगिक समर्थावां दी वी खुल के प्रशंसा की। मंत्री ने भारत दे रक्षा निर्माण खेत्र की शलाघा की ते उन्नत फौजी कार्यां च सहयोग करन दी इस दी वधदी समर्था दा जिक्र किया। श्री हैक्सथ ने कहा कि भारत उच्च पदरी फौजी समर्थावां नूं बनाई रखने लई जरूरी उद्योगिक अते लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। वाइस एडमिरल संजय वासन ने भारतीय समुद्री फौज की पछमी कमान के मुखी वजो अहुदा संभाल लिया है। इस अहुदे नूं समुद्री फौज में सब तो महत्वपूर्ण संचालन अहुदों में एक मनिया जाता। इस तो पहला वह नवी दिल्ली में समुद्री फौज के हैडक्वार्टर विखे समुद्री फौज के उप मुखी वजो सेवा निभा रहे सन। तंबाकू के खतरों विरुद्ध जागरूकता पैदा करने लिए अज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विश्व सेहत संगठन वालों तंबाकू की वरतों को खत्म करने लिए एक विश्वव्यापी पहल है। तंबाकू रहित दिवस के हिस्से वजों केंद्रीय सेहत सकत्र पुन्य सलीला श्रीवास्तव ने शुक्रवार नवी दिल्ली में तंबाकू मुक्त सिक्ख्या संस्थावां TOFEI ऐप की अजमायशी शुरुआत की। इस ऐप का उद्देश देश के स्कूलों कॉलेजों में तंबाकू मुक्त नियमों लागू करन निगरानी मजबूत

0: आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में अज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। यह मैच शामी 7:30 तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम खेडा जाएगा। मेज़बान इंग्लैंड ने दूजे 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम को 26 हरा दिता है। इंग्लैंड ने बीती रात ब्रिस्टल में पहला बल्लेबाजी करदिया अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकटा 168 दौड़ा बनाईया। भारतीय स्पिनर श्री चरनी ने 3 विकटा लिया। जवाब में भारतीय टीम 9 विकटा सिर्फ 142 दौड़ा ही बना सकी। लड़ी का तीजा ते आखिरी मैच मंगलवार को टोंटन में खेडिया जाएगा। पहला मैच भारत ने जितया सी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स फाइनल अज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मुहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अलफियान की जोड़ी नाल होएगा। भारतीय जोड़ी ने सैमीफाइनल में दक्षिणी कोरिया के स्यू सेंगजे और किम वॉन हराया सी। गुजरात के वलसाड़ जिले के 18 साल राहुल जाखड़ ने होंगकोंग 22वीं एशियन अंडर 20 एथलैटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के डेकथलोन मुकाबले में सोने का तमगा जीतया है। अंत में चोणवी खबर ते नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों अपने विचार साझे करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन सिंदूर दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज को अपनी बंदरगाहों तक सीमित रहने मजबूर किया। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लिए पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन के बरामदी महसूल में सोध की है। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में अज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा। नमस्कार।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: ऑन बॉयज लेट्स गो प्रैक्टिस। ओए रुक यार, मेरे बैंक खाते विच गलत एंट्री दी प्रॉब्लम हो गई है।
3: ओए तो बैंक को शिकायत करना।
2: बैंक नु लिखे 1 महीना हो गया है पर ओ गुगली ते गुगली सुट्टी जा रहा है। ता RBI दे बैंकिंग लोकपाल नु शिकायत कर।
4: रुक मैं समझाउना। जिवे क्रिकेट विच थर्ड अंपायर ओवे ही RBI दा बैंकिंग ओंबड्समैन। RBI कहंदा है जे बैंक तुहाडी शिकायत 1 महीने विच नहीं सुलझाउंदा ता तुसी RBI दे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ते ऑनलाइन शिकायत कर सकदे हो। ए RBI दा सौखा तरीका है तुहाडी शिकायत सुलझाउण दा ते ओ वी मुफ्त। RBI कहंदा है जानकार बनो, सचेत रहो।
5: असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडिया वेब 347.6 MHz या 873 KHz से। आओ हुण तरसेम मसीह ते साथियां दे गाए मसीही भजन सरवण करदे हां।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से इस वेले तुसीं हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुन रहे हो ते इस प्रोग्राम दे विच तुहाड़ियां फरमाइशां नूं तुहाड़े तक पहुँचाया जा रहा है। 0181-2342-173 नंबर नूं जदों तुसीं डायल करदे हो ते साडे इस प्रोग्राम दे विच पहुँच जांदे हो। अगले कॉलर भी आ गए ने अपनी फरमाइश दे नाल, गलबात करदे आं। हैलो,
3: हैलो,
2: नमस्कार जी। हैलो,
3: हैलो,
2: हाँ जी, अपना नाम पता ग्राम दसो।
3: मेरा नाम गगनदीप सिंह जी।
2: जी,
3: गिरड़वा तो बोल रहे हैं जी।
2: जी गगनदीप जी, पहला तो पिछे रेडियो सेट की आवाज घट कर लो।
3: ठीक है मैम
2: जी। जदों फोन लग जांदा है ना, फिर जदों गल ऑन एयर तुहाड़ी हो रही हुंदी है ते उदों जां तां रेडियो तो दूरी बना लिया करो, कमरे तो बाहर आ जाया करो, जां फिर उदी आवाज कट कर लिया करो।
3: ठीक है मैम, अज तां फर्स्ट वारी ला रहे हैं, पहली वार ला रहे हैं।
2: पहली वारी फोन लगा है?
3: हां जी, पहली वार कॉल लगा है जी। अभी फ्री सी, अज बैठे सी।
2: एतवार दी छुट्टी मना रहे सी।
3: हां जी,
2: की काम काज करदे हो?
3: मेरा ट्यूबवेल दा काम है जी, ट्यूबवेलां दा।
2: अच्छा, ते अज कर सी ते हुन वैसे तो तुहाडा बोरां दा काम है ते जमीनी पद्धर ते असी पानी दा लेवल किन्ना नीचे, किन्ने लेवल तक पानी मिल जांदा सानू?
3: ता अपने इधर ता इधर उत्ती मिल जांदा मैम, 10 के फुट ती, 10-15 बस एंड।
2: अच्छा जी, तो वैसे तो असी कहंदे आ ना कि इहदा लेवल बहुत डिगदा जा रहा, बहुत डूंघाई तक जिहड़ा पानी आ ओह जमीन दे विचों खत्म हुंदा जा रहा।
3: हाँ जी, बाकी अपने इधर मुक्तसर एरिया गिदड़वा एरिया जी, इधर थोड़ा लेवल है जो ऊपरी है, अजे डाउन नहीं गया था।
2: ठीक है, ते जेड़ा तुसी कहंदे 10-12 फुट तक पानी मिल जांदा है, एक की पानी जेड़ा है पीनी हो गया, साफ पानी मिलता है?
3: हाँ जी, मान लो अपने कई एरिया च 100 फुट तक पानी वधिया पीन योग है जी, वधिया।
2: ठीक है,
3: 100 फुट तक जी,
2: ठीक
3: है, मिल जांदा जमीनी नु, जमीनी तौर ते वधिया ते पीन च वधिया मिल जांदा जी।
2: चलो, बहुत वधिया। ते अज घर बह के फिर रेडियो दा साथ ता हैगा, होर की खास कर रहे हो फिर छुट्टी नु मनान दे लई?
3: नहीं कर रही है मैं, होर तो कुछ कोई नहीं खास कर रहे।
2: चलो, आराम कर रहे हो ते आराम दे नाल नाल हुन गीत दा मजा लो अपने। अपनी पसंद दा गीत दसो, केड़ा सुनोगे?
3: हिंदी सॉन्ग सुना दो, तेरे नाम सॉन्ग फिल्म दा जी।
2: तेरे नाम फिल्म दे विचों गीत तुहाडे तक पहुंच रिहा जी, शुक्रिया कॉल करन दे लई जी।
3: थैंक यू मैम।

0: तुम्हारे नाम से शुरू तुम्हारे नाम पर ख़त्म होती है मेरी हर धड़कन की कहानी, बस तुम पर ही आकर रुकती है। बिल्कुल जी, तुहाडे नाम दे नाल तुहाडियां फरमाइशां नूं तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा है। प्रोग्राम है हैलो फरमाइश, तो प्रोग्राम तुसीं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो इस वेले सुन रहे हो। तो प्रोग्राम दे विच अगले कॉलर अपनी केड़ी फरमाइश दे नाल आए ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो
1: जी। जी, ताजमहल फिल्म है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, जो वादा किया असीं निभावांगे, तुहानूं तुहाडी पसंद दा गीत सुनावांगे। पहला अपना नाम पता ग्राम दसो जी।
1: किन्नियां जमातां? मदर रियाज मेरा नाम है, संदीला वा मेरी जात है, ते जिम्मेदार हां मैं।
0: अच्छा जी,
1: अपने भरा दी कोठी च बैठा होया, पिंड साडा बाहरों ट्रालियां लंघ रहियां ने, आवाज आ रही तुहानूं, मिट्टी लै के पट्टे दे राह साडा उन्हां खराब कर छड्डिया है।
0: अच्छा,
1: सड़क पट कड्डी उन्हां ने।
0: अच्छा,
1: कार च जाने बड़ी मुश्किल नाल।

मोहब्बत कोई लफ्ज़ नहीं जो कह दिया जाए, ये वो एहसास है जो हर धड़कन में महसूस किया जाए। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी दे गाए तुमसे अच्छा कौन है फिल्म दे विचों ले। इस गीत दे नाल ही अज दा हैलो फरमाइश प्रोग्राम मैनू इत्थे ही खत्म करन दी इजाज़त दे दिओ, पर तुसी आकाशवाणी दे अलग अलग सिलसिलियां दे नाल इसे तरह बने रहना। नमस्कार।

0: ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था, तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर।

0: दौड़ रहा है, तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर वीर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है,

0: उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट

तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे

उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी

अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाप इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेट

0: नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हुणे तुसी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों लई प्रसारण मन की बात सुन रहे सी। साडे अगले ऐलान का इंतजार करो। मीडियम वेव 343.6 मीटर या 873 किलोहर्ट्स, FM 102.7 मेगाहर्ट्स, DTH दी AIR पंजाब सेवा, DRM 864 किलोहर्ट्स, 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती, 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगाहर्ट्स अते 100.8 मेगाहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तो थोड़ी देर बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियों लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना ते पटियाला केंद्र भी ए प्रसारण नालों नाल करनगे।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात विच एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़ के ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਕੇ, ਤੇਜਸਵਿਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਦੇਵ ਮੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ। 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ 3 ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਮੇਸ਼ ਕੁਜੂਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਨਿਮੇਸ਼ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
4: ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਨਮਸਕਾਰ।
3: ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जा लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 12:05 होए ने ते लो जी नन्ने मुन्ने

0: जय हिंद।
1: कदे उदासी आवे मन ते बच्चे करदे दूर, गोदी दे विच आके बैठन सब गम चकना चूर। इना प्यारे प्यारे होन हार बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम लेके उना दे रेडियो सेट उपर हाजर हो चुके ने जी, सुखदीप और हरप्रीत। और एतवार दी इस खूबसूरत जी दोपहर नू होर ज़्यादा खूबसूरत बनाउण दे लई प्यारे बच्चियों तुहाडियां हाजरियां भी इस प्रोग्राम दे विच लगणगियां।
0: और तुसी जिस तरीके दे नाल अपनी परफॉर्मेंस साडे नाल सांझियां कीतियां ने, बा कमाल है। और सानू पता है कि जिहड़ा एतवार दा दिन हुंदा, बाल जगत प्रोग्राम हुंदा, तुहानू भी इंतजार हुंदा कि तुहाडियां आपदियां परफॉर्मेंस दा, गीत संगीत दा और इनफॉर्मेशन दा। तो बच्चियों हुण इंतजार दियां घड़ियां खत्म हो गईयां ने, आपां हाजिर हो चुके हां और ढेर सारियां गल्लां बातां असीं तुहाडे नाल करनियां ने। पर सब तों पहलां तां बच्चा पार्टी, पाणी पूणी पी रहे हो ना? इन्नी गर्मी पै रही है, कल ते मीह आ गया सीगा, ठीक है, पर इहदा मतलब इह नहीं हैगा कि एक दिन मीह ते तुसीं अपना पाणी पीणा छड्ड दो।
1: लो जी प्यारे बच्चे, छुट्टियां तुहाडियां होण वालियां ने और कई बच्चों नूं ना हरप्रीत जी सरप्राइज़ हो जाना।
0: कहते सरप्राइज़?
1: सरप्राइज़ हो जाना कि उन्होंने टीचर साहबान जदों उन्होंने घर के विहड़े आ जाने ना, तो पहला तो उन्होंने डर जाना, हाए ये क्यों आ गए, मैं तो कोई गलती की नहीं।
0: शिकायत लाने आए होंगे।
1: हाँ, पर नहीं प्यारे बच्चे, ये जिहड़े टीचर साहबान कोइंसीडेंटली तुहाडे घर आउणगे ना, ये पता क्यों आ रहे ने तुहाडे घरां दे विच? जनगणना चलती पई है। जनगणना दा भाव है कि असी किन्नी पापूलेशन कर ली है, साडा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हुण की है, असी की खांदे हाँ, की पींदे हाँ और किवें दे घरां दे विच रहिंदे हाँ, ये सारे अंकड़े सरकार हर थोड़े थोड़े सालों बाद इकट्ठा करती है। और वह इकट्ठा करन दे उत्ते तुहाडे टीचर साहबान की ड्यूटी जिम्मेवारी दे नाल लगाई गई है, जेडे पिंड पिंड शहर शहर गली गली सब दा डाटा कलैक्ट करते पे ने, और जदों भी वह आते ने तुसी उन्हां दे नाल कोआर्डीनेशन करनी है और मेक श्योर कर लियो कि ये वह बकायदा उही परसन ने ना जिन्हां दी ड्यूटी लगी है, कोई होर परसन नूं तुसीं अपनी ओ अनमोल जानकारी बिल्कुल नहीं देनी।
0: सब तो वड्डी गल है बच्चियो कि तुसीं दरवाज़ा खोलना ही नहीं है, है ना, दरवाज़ा पेरेंट्स नूं ही खोलण दो। अदरवाइज भी जदों तुसीं सतर्क रहोगे डेफिनेटली इदां दे जिहड़े क्राइम्स ने ओह नहीं होणगे। तुसीं बच्चे हो, छोटे हो, काफ़ी गल्लां दा तुहानूं नहीं पता चलदा। पेरेंट्स जदों तुहानूं मना करदे ने तां उहनां दी गल मन लैणी चाहीदी हुंदी है और उहदे विच ही भलाई हुंदी है। और सब तो वड्डी गल है, अगर कोई तुहाडे वेहड़े आउंदा पिया ते तुसीं होर कुछ करो या ना करो, एटलीस्ट उहनूं पाणी जरूर पुछ लो जेकर तुहाडा जानकार है तां। और जे कोई अनजाण है, जिद्दां सेंसस वाले आ रहे ने, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
1: ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
0: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਭਈਆ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਵੀ ਜੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਆਮ, ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।

0: और प्यारे बच्चे, वाकई जी कुदरत भी निरंतर बदलती रहती है और सानू भी यही सुनेहा दिंदी रहती है कि असी भी वगदे पानी वांगू वहिंदे रहिए, अपने आकार प्रकार नू समय स्थितियां दे अनुसार चेंज करते रहिए और नवीं नवीं चीज़ां सीखते रहिए। और हुण एक चैलेंज आउंदा पिया है, एक सीखण दी प्रवृत्ति बदलती पई है और असी भी उस दे अनुसार अपने आप नू ढाल लईए। और प्यारे बच्चे, AI टेक्नोलॉजी बहुत तेजी दे नाल पैर पसारदी पई है और प्यारे बच्चियां दी जिंदगी दे विच भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा बनदी पई है। और प्यारे बच्चे, तुसीं इहदा सार्थक वधिया वाला उपयोग करना। देखो साडे टाइम ते ना हरप्रीत, असीं जदों समझना ना आनी ते या ते अपने मम्मी पापा नू पुछना या ओ किसे दोस्त तो पुछना जिन्हों वो गल समझ आ गई, जिन्हों वो सवाल समझ आ गया।
1: जी
0: और आज दे बच्चियां कोल की है?
1: AI
0: AI। और AI जेड़ी भी चीज़ उन्हां नू नहीं समझ आउंदी, जेड़ा भी सवाल रात नू 10 बजे सवेरे 4 बजे उन्हां दे दिमाग दे विच आउंदा ना, वो जाके AI मोड दे अपना फोन करके जदों पुछदे ने ते उहदा खूब विस्थार सहित जवाब भी दे दिंदा। और कुछ AI सिस्टम ते इदां दे ने कि जिहड़े प्यारे बच्चों के नाल गल्लां भी करते हैं।
1: एग्जैक्टली
0: अच्छा प्यारे बच्चों, तुहानू ये गल समझ नहीं आई, मैं तुहानू इस तरीके दे नाल समझाना वा। हाँ, हुण तुसी समझ गए होगे।
1: बिल्कुल जी, भुलेखा पाण वाली गल हैगी है कि कोई टीचर बैठा है पर वाकई AI एक टीचर दा रोल निभा रहा है। इत्थे सिर्फ जरूरत है थोड़े सतर्क रहण दी कि नो डाउट AI दा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो डाउट ओहदा मतलब है हैगा कि असी मोबाइल दी वरतों करदे पए आ,
0: जी
1: नो डाउट है एक टेक्नीक है पर बनाई तो ह्यूमन बीइंग्स ने है ना, ये सारा सिस्टम क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग्स दा ही है ना, तो दिमाग दे ह्यूमन्स दा ही लगा ना कि इस चीज़ नू क्रिएट करन पिछे, तो असी उपर ही रहना आ, इस चीज़ नू भुलना नहीं है। जे AI थानू कोई आंसर दे रहा है तो बिल्कुल ही अखा बंद करके विश्वास नहीं करना,
0: जी
1: थोड़ा जहा ओदे ते अपना दिमाग इस्तेमाल करके ओदी तुहानू तुसी कह लो कि चीज़ समझ नहीं आ रही, समझ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाती ओदे नाल समझ, पर फिर भी हल्की जी ओते होर गहराई नू समझण लई किताबां नू इग्नोर नहीं करना, क्योंकि सब कुछ किताबां दे विच लिखिया हुंदा है और ओदे नाल इक जिहनू कहिंदे तालमेल बनाउणा ओ इक तुहाडे लई इक हैल्प है AI, ओते फुली फेथ नहीं करना तुसी।
0: पर असी देखो जी अपने प्यारे बच्चों ते फेथ कर सकते हैं क्योंकि सानू वो खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग अपने आप करके भेजते हैं। और हरप्रीत, हुण पता की है,
1: जी
0: मैनू तो एक ठंडी ठंडी हवा का बुला महसूस होंदा आउंदा पिया है
1: इस
0: क्योंकि
1: वेले
0: जिहड़ी आ वाली रिकॉर्डिंग आई है ना,
1: जी
0: ये आई है जी कांगड़े दियां खूबसूरत वादियां चो। ते लो जी, कांगड़ा होवे और प्यारे बच्चे दी परफॉर्मेंस होवे, ठंड ते आप ही पै जानी है बाल
1: बिल्कुल,
0: जगत दे विच।
1: ते सुनिए फिर उस बच्चे दी परफॉर्मेंस।
0: बिल्कुल जी।
2: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धर्वी है, मैं गांव सुनूं जिला कांगड़ा की रहने वाली हूँ। दोस्तों मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो भोरों से गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना।

0: सीख हवा के झोंकों से सीखो लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्यारे बच्चों का भी जिन्होंने खूबसूरत वाली रिकॉर्डिंग सानू करके भेजी है। और प्यारे बच्चे वाकई जी मिल मिला के रहन दे विच जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और कल्ले कल्ले ते प्यारे बच्चे उदासी आ जाती है। सो ये दोस्ती, ये भाईचारा, ये सांझ, ये रिश्तियां दा निघ तुसी माणदे ही रहना है। और प्यारे बच्चों साडे नाल भी तुसी दोस्ती खूबसूरत वाली कीती हुई है, सानू खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग करके भेज दिओ, सानू याद रख दिओ और बाल जगत नू बड़ा प्यार दिंदे हो, बड़े माण दे नाल सुणदे हो, इहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
2: असीं चाहुंदे हां कि तुसी इसे तरीके दे नाल ही साडे नाल रिश्ता कायम रखो। साडा फर्ज़ इह हैगा कि असीं तुहाडियां परफॉर्मेंस नू तुहाडे नाल सांझा करिए और थानू ढेर सारी इनफॉरमेशन दईए, ढेर सारा एंटरटेनमेंट दईए। तो यह गिव एंड टेक जिहड़ा है ना, यह चलता रहना चाहिए, सोहना लगता यह लेन देन। तो हुण असीं जांदे हां अगले बच्चे की परफॉर्मेंस वल, सुनते हैं वो बच्चा की कहना चाहता है।
3: सत श्री अकाल सारे, मैं प्रभवीन कौर अज तुहानू साइकिल के कुछ गुणा बारे दसन जा रही हाँ। अज के युग में जिते प्रदूषण और महंगे पेट्रोल का खर्चा दिनों दिन बढ़ रहा है, अजिहे समय से साइकिल साडे लई वरदान है। कुछ दिन पहला ही डीजल ते पेट्रोल दे रेट वध गए हैं, ते जिस तरह दा माहौल है ये कटणगे भी नहीं। इस समय ते लगता है कि साइकिल वरदान हो सकती है। देखा जावे साइकिल सिर्फ आवाजाई लई नहीं सेहत लई भी बहुत अच्छी है। ये तो लोगों ने देखा देखी ही गड्डियां ते दो पहिए वाले वाहन ते जाना शुरू कर दिता है, नहीं तो पुराने जमाने विच लोग साइकिल ते ही आंदे जांदे सन। साइकलिंग एक शानदार कसरत है, सानू रोज ज्यादा तो ज्यादा साइकिलिंग करनी चाहिए है। इस नाल साडा दिल मजबूत रहिंदा है, फेफड़े तंदुरुस्त हुंदे हन अते शरीर विच फालतू दी चर्बी घट हुंदी है। इस नाल मोटापे अते शुगर वर्गियां बीमारियां तो बचिया जा सकता है। साइकिल चलाउंदे समय शुद्ध हवा सानू तरोताजा कर दिंदी है, यह साडी चिंता नू भी घटा दिंदी है। यह सिर्फ साडी शरीर नू ही नहीं सगों साडे दिमाग नू भी मजबूत करता है ते साडी दिमागी शक्ति नू भी वधाउंदा है। साइकिल कोई भी धुआं या गैस नहीं छड़दा, इस लई साइकिल चलाउण नाल साडा वातावरण साफ रहिंदा है। साइकिल सस्ता ते सांभण विच बहुत आसान है, इस विच तेल दा कोई खर्चा नहीं आउंदा। भीड़ वाले शहर विच इह सानू जाम तों भी बचाउंदा है। पंजाब दा लुधियाणा शहर पूरे भारत विच साइकल सिटी दे नां तों वी जाणिया जांदा है। इत्थे देश दे ज़्यादातर साइकल बणदे हन। अंत विच मैं इह कहांगी कि सानू अपनी रोज़ाना जिंदगी विच साइकल जरूर चलाउणी चाहीदी है। धन्नवाद।
2: वाह जी वाह प्रबलीन, छा गए तुसी, बहुत ही वधिया विषय नू चुनिया तुसी। और वाकई साइकल एदा दी चीज़ है कि जे असी चलाइए ते उहदे तां बहुत बहुत बहुत फायदे ने। और प्रबलीन तुहाडे बोलण दा अंदाज़ भी बहुत वधिया सीगा। उम्मीद करदे हां तुसी ऐसे तरीके दे नाल साडे प्रोग्राम दे विच अपनी हाजिरी लगवाउंदे रहोगे और वधिया वधिया रिकॉर्डिंग्स वधिया वधिया विषय ते सानू करके भेजदे रहोगे। ते इदां ही होर बच्चे भी साडे नाल रिश्ता कायम रखणगे। जिहड़ा बच्चा अज सब तों पहली वार बाल जगत सुणदा ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਏਅਰਪਲੇਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਟੂੰ ਟੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਡਾ।
1: ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ।
4: ਨਮਸਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਂਵ ਬਹੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਕੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਜ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ, ਜਿਸਕਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਹਮਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਦੇਸੋ ਸੈਨਿਆ ਰਾਮ ਮੁਕਟ ਹਿਮਲ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ, ਧੋਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਸਮੁੰਦਰ। ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ, ਜਿਨਸੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਅਨਫੂ

0: जल हैं प्यारे, तुझ में रतन जवाहर न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरे गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयस बढ़ाएं। जय हिंद।
1: लो जी, जिन्हों भी बच्चों ने अज सानू खूबसूरत वालियां रिकॉर्डिंग करके भेजिया ने उन्हों का फिर तो असी धन्यवाद करते हैं। और प्यारे बच्चों, ये वाली जिहड़ी आदत है बना के रखनी है। और बाल जगत हर एतवार को 12:05 पर आउंदा है मीडियम वेव 343.6 मीटर पर। और हुण लो जी, प्यारे बच्चों लैके चलते हैं एक खूबसूरत जे ग्रुप सोंग के वाल।

0: बहुत ही वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया कोऑर्डिनेशन, बहुत वधिया इफेक्ट, और क्रेडिट सारा जाता टीचर्स नू। बच्चों तुहानू तो जाता ही जाता, पर टीचर्स दे क्रेडिट नू असी इग्नोर नहीं कर सकते। टीचर्स ने बड़े वधिया तरीके दे नाल तुहानू ए सिखाया, और वो झलकदा आ, सब पता चलदा आ। ते बच्चों ऐसे तरीके दे नाल ही सानू अपनी जड़ी रिकॉर्डिंग्स है भेजते रहो। ते हुण एक होर बच्चा जिन्ने अपनी रिकॉर्डिंग सानू भेजी है, चलते हैं उसकी रिकॉर्डिंग वाल, तो सुनते हैं वो बच्चा की कह रहा है।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ। साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दिन दा 1 बज रहा है। आ हुण सुनदे हां हिंदी च समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
6: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
6: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है।

0: वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दा 1:05 होए ने ते लो जी हुण दस रहे हैं तुहानू परिचय तहत अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दी जानकारी। दिने 1:15 तो लैके 1:40 तक ते फिर 2 तो लैके 2:15 तक दा समा रहेगा रोजाना प्रोग्राम फौजी वीरां लई दा। दिने 2:30 रंगली धरती प्रोग्राम दे विच निरंजन सिंह नूर ढाडी ते साथियां नूं सुणोगे। 4:02 ते साडी दूसरी सभा दे शुरू च तुसी सुणोगे प्रोग्राम सिरजना। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गुरतेज सिंह कोहारवाल दे नाल सुखजिंदर सिंह होणा दी गलबात दा मुड़ प्रसारण सुनाया जाएगा। शाम साढ़े चार बजे रोज़ की तरह असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर ले चलांगे जिथों तुसी शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 का समा रहेगा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार दा। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम च काम दियां गल्लां ते सोनी मक्की दी काश्त बारे

0: सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी समझौता करने के करीब है। साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि मुजाकरात नाकाम होने की सूरत में फौजी कार्रवाई का रास्ता खुला है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में इंडोनेशिया की जोड़ी का सामना कर रही है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में विरासत के अनमोल मुकामात को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में एक अहम दरियाफ्त के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी पर अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वहाँ छठी और सातवीं सदी के पांडुवंशी खानदानी सिलसिले के महर्षि बलार्जुन से वाबस्ता तांबे की तीन कामयाब तख्तियां पाई गई हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: वज़ीर आज़म ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी तذکرہ किया, जहां एक खसूसी तकरीब में चोला दौर की कदीम ताबे की तख्तियां भारत को वापस की गईं। जनाब मोदी ने कहा कि लोग खुशी का और फख्र का इजहार कर रहे हैं, साथ ही दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग ख़ास तौर पर इस बारे में जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: वज़ीर आज़म ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो गर्मी के इन दिनों में जहां तक हो सके एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से जारी किए गए रहनुमा उसूलों पर अमल करें। जनाब मोदी ने तजवीज़ किया कि लोगों को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ मशरूबात पीना चाहिए, जिनमें आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी शामिल हैं। ये सब गर्मी को दूर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती अंदाज से बनाए जाते हैं।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: आम का तस्करा करते हुए मौसम गर्मा के दौरान जिनकी अक्सर व बेशतर बात होती है, वज़ीर आज़म ने कहा कि हर खित्ते के अपने अपने आम हैं, अपनी अकसाम हैं और अपना जायका है। जनाब मोदी ने आम की काश्त में शामिल किसानों के रोल को भी सराहा और कहा कि आम का ये सफ़र अब गांव से आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। अपने मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने झारखंड के शहर रांची में हाल ही में मुनक़िदा नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन मुकाबलों का जिक्र किया, जहां तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मुकाबलों में 4 नए कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर गुरिंदर वीर सिंह, टी के विशाल, तेजस्विन शंकर, देवमीना और कुलदीप कुमार को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने एक वीडियो के बारे में भी बात की, जिसमें ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में दरियाए गंगा की एक डॉल्फिन को फंसने के बाद बचाया गया। जनाब मोदी ने इस बात का तذکرہ किया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इस कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर के तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि भारतीय मुसल्लह अफवाज मुल्क के इख्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए

0: की जा रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने में हमेशा पेशावराना सलाहियत और कार्रवाई से मुतालिक फैसले करने की सलाहियत का मुजाहरा किया है और वो मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबस्ता हैं। मुल्क के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि अंदाज फिक्र और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज बहरिया के 27वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की जगह ली है। कमान संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए भारतीय बहरिया मुस्तैद और चौकस है और उसे इलाकाई सिक्योरिटी के ऐसे माहौल में सरगर्मी के साथ तैनात किया जा रहा है जो चैलेंज से भरपूर, पेचीदा, गैर मुतवक्के और गैर यकीनी की कैफियत वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क उनकी जहानत, दर्दमंदी और अवाम की फलाह बहबूद के तहीं गैर मामूली लगन के लिए उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एटमी मामले पर समझौते के करीब पहुंच गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो फौजी कार्रवाई एक मुतबादिल रास्ता रहेगा। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी इंतजामिया की तरजीह इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। जुनूबी दिल्ली में कल शाम साकेत मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक कमर्शियल इमारत के ढह जाने से 3 अफराद की मौत हो गई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 जख्मी अफराद को इलाज के लिए लाया गया, इनमें से 3 को मुर्दा करार दिया गया। इधर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता आज जुनूबी दिल्ली में उस मुकाम पर गईं जहाँ ये वाकया पेश आया था। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान की जोड़ी से होगा। क्रिकेट में आज आईपीएल 2026 का फाइनल गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क के विरासती मुकामात को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जनाब मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे में चोला दौर की तांबे की कदीम तख्तियां भारत को वापस किए जाने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो शदीद गर्मी के दिनों में अपना ख्याल रखें, रिवायती अंदाज से बनाए गए भारतीय मशरूबात को बढ़ावा दें। जनाब मोदी ने आम की मुख्तलिफ अकसाम को आलमी मार्केट तक पहुँचाने के लिए किसानों की सताइश भी की। दिफाई अमले के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि भारतीय मुसल्ला अफवाज मुल्क के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए अहदबंद हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने बहरिया के नए सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारी संभाल ली है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: फौजी वीरो एक बार फिर तो तुहाड़ा स्वागत करते हैं प्रोग्राम फौजी वीरा लई च। लो जी, अगला गीत असी फौजी वीरो तुहाड़े लिए चुन लिया है, जिस विच बहुत सारिया प्यार भरिया भावनावां लबरेज ने। आओ सुन लिए फिर अरिजीत हुणा दी आवाज़ शाशा इन्हां दे नाल, ते फिर नाल ही आएगी श्रद्धा कपूर दी आवाज़ भी।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੜਿੰਗ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना

0: सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए है।

0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा।

0: श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रंगली तैरती इस प्रोग्राम दे ले बस कुछ कु पलों का इंतजार।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा
2: फिर तो
3: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन लम्मे अंदर जाओगे
4: 10 लाख दियो बच जाओगे।
2: सर एना किथों ले आवां?
4: एक लिंक भेजा है हुणे प्रोसेसिंग लई
3: 2 लाख भेजो बाकी बाद विच।
2: सर 2 लाख
5: की होया पापा?
2: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल चो ड्रग्स मिले हन।
3: ओए
2: कट दिता।
5: घबराण दी लोड़ नहीं पापा, डिजिटल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आकाशवाणी दे अपने मन दी बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नूं संबोधित करदिआं देशवासियां नूं गंभीर गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालन करन दी अपील कीती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय समुद्री फौज ने ऑपरेशन संदूर दे दौरान पूरी पाकिस्तानी समुद्री फौज नूं अपनी बंदरगाहां तक सीमित रहने लई मजबूत कीता सी। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम ने अज देश दे नवे चीफ आफ डिफेंस स्टाफ अते एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने समुद्री फौज दे अगले मुखी वजो अपना अहुदा संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंद्रवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन ते बरामदी महसूल विच सोध कीती है। दक्षिणी दिल्ली दे साकेत मैट्रो स्टेशन नेड़े कल शाम एक चार मंजिला व्यापारक इमारत ढह जाण नाल तीन लोकां दी मौत हो गई। पंजाब राज अते चंडीगढ़ मनुखी अधिकार कमिशन वल्लों पंजाब दे सारे डिप्टी कमिश्नर दफ्तरां दे जिला पदरी कॉम्पलैक्स विच पंजाब राज मनुखी अधिकार कमिशन दी कोर कमेटी दे जिला दफ्तर खोले जाणगे।

लो जी दोस्तों, हुण तां पूरी मस्ती वाली फील आ गई है। कदे कदे बिना वजह भी खुश होना चाहिदा है। जिंदगी उही सोहणी लगदी है जिथे हासे दी आवाज भी आंदी होवे। चलो जी, हुण समा हो गया है साडी अगली चिट्ठी पढ़न दा जी। आज सानू अगली चिट्ठी आई है जी, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियाज ठाकुर, मुक्तसर तो बब्बू सिंह, बलजिंदर कौर, रवनीत, निशु, भुपिंदर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब तो हरदेव, मिक्का, बलविंदर, जतिन, मिक्का बिरक, पिंड पंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल, कमलदीप, एस के शर्मा, जगतार टेलर। इन्हों सब की फरमाइश से सुनद अगला गीत।

0: कुछ गीत होले होले दिल विच उतर जांदे ने, बिल्कुल इस गीत वांग। दिल नाल जुड़ियां चीज़ां दी गल वक्री हुंदी है दोस्तो, वह हमेशा कोल महसूस हुंदियां ने। जे तुसी भी अपनी दिल दियां गल्लां, अपनी फरमाइशां जां अपने पुराने सुनेहे साढ़े तक पहुँचाना चाहते हो तो सानू चिट्ठी जरूर लिखो। साडा पता नोट कर लो, मार्फा स्टेशन ट्रैक्टर, ऑल इंडिया रेडियो जलंधर। अपना नाम, पसंद दा गीत ते उहदे सिंगर दा नाम लिखना बिल्कुल नहीं भुलना। चलो पढ़ते हैं अगली चिट्ठी जो सानू लिखी है। गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन, पायल, बेबी हनीशा, बेबी कैरवी। जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, पप्पी, नवीन ते सारा ही भाटिया परिवार। डब्बवाली हरियाणा तो जीके बगोतला, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू। आओ सुनते हैं इन्हां दी समरी फरमाइश ते अगला गीत।
1: गुरमीत सिंह, कलेरकंठ, with Rajiv in the keys.

दोस्तों मैनू लगदा है दिल दी गल कह ही देनी चाहीदी है, क्योंकि चुप रह के कई वारी दूरियां वध जांदियां ने। जो दिल च है वो कह दिओ, रिश्ते अपने आप नेड़े आ जांदे ने। इस दे नाल ही पढ़दे हां अगली चिट्ठी जो सानू पहुंची है फतेहगढ़ साहब तों रामनाथ, सुखमनजीत, सहजप्रीत कौर, बठिंडा तों हरजिंदर, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सैक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ तों टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका तों सुभाष चंद्र बजाज, साहिल ते सारा ही बजाज परिवार। आओ सुनदे हां इन्हां दी सारे दी फरमाइश ते अगला गीत।

प्रोग्राम चल रहा है जी चिट्ठियां मिठियां। दोस्तों तुहाड़ियां चिट्ठियां ही इस प्रोग्राम की असली ताकत है। जिन्ना प्यार तुसी सानू दिंदे हो उन्ना ही सफर सोना बन जांदा है। जे तुसी भी अपने मन दियां गल्लां फरमाइशां जां सुनेहे साढ़े तक पहुँचाना चाहते हो तो सानू वध तो वध चिट्ठियां लिखिया करो। तो अपने आस पास वालियां नू भी क्या करो कि चिट्ठियां रेडियो ते भेजिया करन। रेडियो नाल जुड़न का सब तो वधिया तरीका है। शब्दां नाल जुड़दे ने दिल इत्थे, इसलिए चिट्ठियां अज भी खास लगदियां ने। तुसी भी अपने चिट्ठियां भेज सकते हो। साडा पता एक बार फिर नोट कर लो। पता है जी मार्फत स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो जलंधर। चलो चलते हैं अगली फरमाइश वाल। अगली फरमाइश आई है सानू पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता गीता कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीत ते वंश तरन तारण तो सुनीता गुरदर्शन लाल रजनी आकाशदीप। आओ सुनते हैं सनबी फरमाइश ते अगला गीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।
3: बंदरगाहां तक सीमित रहने लई मजबूर कीता है। केंद्र सरकार ने कल तो शुरू हो रहे पंदरवाड़े लई पेट्रोल डीजल अते हवाई ईंधन दी बरामदी मैसूर विच सोध कीती है। दक्षिणी दिल्ली दे साकेत मेट्रो स्टेशन नेड़े कल शाम एक 4 मंजिला व्यापारक इमारत टह जाण दे नाल 3 लोकां दी मौत हो गई है। महाराजा रंजीत सिंह आमर्ड फोर्मिज पेप्रोट्री इंस्टीट्यूट SAS नगर दी 5 साबका कैडेट पुणे दी खड़कवाला स्थित वारकी कौमी रक्षा अकेडमी तो ग्रेजुएट हुए ने। मौसम विभाग ने आज अते कल लई पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ दे वख-वख हिस्सियां विच गरज चमक दे नाल तेज

तप लुह लुह हाथ मरो रौ, बावल हुई सो सौ लो रौ। ए बिरहो पिजे बोल बाबा फ्रीद जी दे श्री मुख चो उचारित ने, जो प्रभु प्रीत दी परबल तांग रखन वाली जीव रूपी स्त्री दे हिरदे दी वेदना है। मिलाप दी बात बाणी विच ते नता प्रति अरदास विच इंज हुंदी है। सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नाम नू चेते कराउण वाली सखी गुरमुख जन संत जन प्रभु नाल प्रीत स्थापित करन विच सहाई हुंदे हन। इसे करके जीव रूपी स्त्री दी बेनती हुंदी है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सरवण करदे हां भाई भगवंत सिंह होरां वल्लों गायन कीता ये

संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन कीता सी पाई भगवंत सिंह होरा। गुरमत अनुसार सच्ची प्रीत, उत्तम प्रीत उस प्रभु नाल प्रीत है। दुनियावी प्रीता एक पासड़ हुंदिया ने, जिमें मच्छी दी पानी नाल ता प्रीत है, पर पानी दी मच्छी नाल नहीं। पंवरे दी फुल नाल ता प्रीत है, पर फुल दी पंवरे नाल प्रीत नहीं है। पर प्रभु प्रीत जीव रूपी स्त्री वालों प्रभु नाल भी प्रीत है। ते प्रभु भी अपने प्यारे जना नूं प्रेम करदा होया कंठ नाल लौंदा है। ताही तां सदैव प्रभु नाल मिलाप दी प्रीत इना वडभागे हिरदिया विचों उपजदी रहिंदी है। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बडभागी। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत अते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगौ मुहे करो बेनती, को संत मिले बड़ पागी। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। आओ हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी परमजीत सिंह।
1: गौड़ी महला पंजवां। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करूं बेनती, कोऊ संत मिले बड़ पागी।

रहाउ। मन अर्पों धन राखों आगै, मन की मत मोह सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै वैरागी। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। एह पावन शब्द शहीदां दे सिरताज साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी दे पावन मुखार बिंद तों उचारण कीता होया है, अते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पवित्र अंग 204 ते राग गौड़ी विच शोभनीक है। शब्द दे केंद्री भाव रहाओ वालियां अमृत पंक्तियां विच गुरु साहब जी ने प्रभु प्यार विच बेहबल होई निमाणी जिंद दी वेदना नूं बयान कीता है। जिवें एक प्यासा व्यक्ति पानी दी इच्छा रखदा होया व्याकुल हुंदा है, उन्नी देर उस दी प्यास दूर नहीं हुंदी जिन्नी देर तक उस नूं पानी नहीं मिल जांदा। इसे तरह जिस प्राणी नूं प्रभु दर्शना दी प्यास लग जावे, ओह वी व्याकुल हो के प्रभु दे प्यार विच अरजोइयां करदा है। अमृत शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां हन। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करों बेनती। को संत मिलै बड़ पागी रहाओ। परमात्मा नूं मिलन वास्ते मेरे मन विच प्रीत पैदा हो गई है। परमात्मा नाल मिला सकन वाला जे वड्डे भागां वाला गुरु संत मैनू मिल पए तां मैं उस दे पैरी लगां। मैं उस अगे बेनती करां कि मैनू परमात्मा नाल मिला दे। इस अवस्था दा वर्णन करदिआं होइआं गुरु अर्जन साहब जी ने बाणी विच इक पावन शब्द दृढ़ करवाया है। पातशाह जी दे बचन हन, कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजह प्राण अकोर रहाउ। मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर। इह रसमह मगन होत किरपा ते, महा बिखिया ते तोर। गुरु साहिब जी फरमान करदे हन, मन अर्पों धन राखों आगै, मन की मत मोहे सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै वैरागी। सतगुरु जी फरमाउंदे हन कि मैं अपना मन उस दे हवाले करदिआं, मैं अपना आप उस दे अगे रख दिआं, मैं अपने मन दी सारी चतुराई छड दिआं। जेकर कोई मैनू प्रभु नाल मिला दवे, उस दे घर दियां कथा कहानियां सुना देवे। दरअसल पदार्थां दा मोह मनुख नूं संसार विच हंकारी बना दिंदा है। दुनियावी प्रभता दे नींद विच सुत्ता होया मनुख सब कुछ अपना समझ के परमात्मा नूं भुला बैठदा है। जो असल मकसद प्रभु भगती करन वाला सी, उस नूं अपने अंदरों विसार देंदा है। प्रभु दर्शना दी प्यास ने मनुख दे अंदर यह समझ पैदा कर दिती कि इत्थों दे दुनियावी पदार्थ किसे काम नहीं। इसलिए सतगुरु जी फरमाउंदे हन कि जे सतगुरु रहमत करे प्यारे प्रीतम नाल मेरा मिलाप करवा देन तां मैं सब कुछ कुर्बान कर देवां। विचार अधीन शब्द विच पातशाह जी फरमाउंदे हन, जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस विछै वैरागी। भाव जिहड़ा वडभागी संत गुरु दा प्यारा मैनू परमात्मा दियां सिफत सलाहां दियां गल्लां सुनांदा रहे, मैं हर वेले उस दे पिछे प्रेम विच कमली होई फिरदी रहा।

गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सत्संग पए साधु जन, हृदय मिलिया सांत मुरारी। इस शब्द का गायन किया सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
3: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
3: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। PM स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को PM स्वनिधि के ऋण चेक और QR कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमरीका के

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: शिव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। पेश है आज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्राम की जानकारी और उन्हों का प्रसारण समा।

0: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्ननु तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ए कहानी है एक हाउसवाइफ ते ओदी अंतरात्मा दी। बिजली दा बिल, करियाना, स्कूल दी फीस, सब हो गया। बन गया बजट?
3: हाँ,
2: 5000 बच गए। ता नवी साड़ी ले लवा?
3: ना, पिछले महीने ही ता लई सी।
2: एक होर?
3: नहीं,
2: पहला बजट बनाओ, फिर छोटियां छोटियां बचतां नू बैंक च बचा के रखो, ते पैसियां नू वध दे वेखो।
3: वड्डी आई
2: हुण जा भैणे।
4: आरबीआई कहिंदा है
2: वित्ती समझदारी खुशहाल नारी।
5: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तों परदेशक खबरां सुणो। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं मौजूदा भयानक गर्मी दे मौसम दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशां दी पालना करन दी अपील कीती है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज चोटी दीआं पोजीशनां हासिल करन वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात की। उन्होंने राज की सिक्ख्या प्रणाली विच हो रहे महत्वपूर्ण सुधारों ते खुशी प्रगट की है। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातियों बारे अपने हालिया विवादित बयान ते अफसोस प्रगट करदिआं माफ़ी मंगी है। पंजाब ने देश भर चों तंबाकू सेवन के सब तो घट मामलों नाल जनतक सेहत विच एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो IPL क्रिकेट के फाइनल विच अज अहमदाबाद विच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों नूं मौजूदा भयानक गर्मी दौरान बेहद सावधानी वरतण अते सरकारी दिशा निर्देशों की पालना करन दी अपील कीती है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच उन्होंने लोगों नूं घर तों बाहर निकलण तों पहलां वध तों वध पानी पीण अते सूरज तों बचा लई सुरक्षा उपा अपनाउण दी सलाह दित्ती।
6: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अनमोल विरासत को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह खुलासा भी किया कि ज्ञान भारत मुहिम के हिस्से वजों छत्तीसगढ़ के मल्हार विच पांडू राजवंश के महारिषि बलराजन नाल संबंधित 6वीं-7वीं सदी दीआं 3 दुर्लभ तांबे दीआं प्लेटां मिलियां ने। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची विच आयोजित राष्ट्रीय सीनियर अथलैटिक्स फैडरेशन चैंपियनशिप बारे गल कीती। इस चैंपियनशिप विच लगभग 800 अथलीटां ने हिस्सा लिया। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके ते जसविंद शंकर, देव मीना ते कुलदीप कुमार नूं राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़न लई वधाई दित्ती। उन्होंने गुरिंदर वीर सिंह ते अनिमेश कुजूर नाल गल भी कीती।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर

0: एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
3: मोदी ने देशवासियों को अपील की कि वह अपने आले दुआले के समाज की बेहतरी लिए लगातार काम कर रहे लोगों की शलाघा कर आप भी चंगे कामों में शामिल होण। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 8वीं 10वीं ते 12वीं जमात समेत पंजाब भर के चोटी दीयां पोजिशन हासिल करने वाले विद्यार्थियों नाल मुलाकात की। इन्हां विद्यार्थियों ने आपो अपने जिलों ते पूरे राज विच चोटी दीयां पोजिशन हासिल कीतियां ने। मुख्यमंत्री ने इस मौके बोलदिया पंजाब की सिक्ख्या प्रणाली में हो रहे महत्वपूर्ण सुधारों से खुशी प्रगट की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मुकाबले वाली सख्त ते चुनौतीपूर्ण प्रीख्यावां सफलतापूर्वक पास कर रहे हैं।
4: सारे पंजाब दे 8वीं 10वीं ते 12वीं दे टॉपर बच्चे सी उन्हां नूं मिलन दा मौका मिले है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट दे विच ते पंजाब दे विच टॉप कीता है। ते साडी जिहड़ी एजुकेशन प्रणाली पंजाब दे विच जो बहुत वड्डे सुधार वल जा रही है ते अचीवमेंट्स जिहड़ियां कीतियां ने, केरला नूं पछाड़ के पंजाब पहले नंबर ते आया है। नीति आयोग दा इह डाटा जिहड़ा पिछले दिन जारी होया, बहुत खुशी है कि साडे सरकारी स्कूलों दे बच्चे जिहड़े ने उह बहुत वड्डे वड्डे औखे औखे टफ एग्जाम जिहड़े ने उह क्लीयर कर रहे ने। तो मैं सारे पेरेंट्स नूं, सारे टीचर्स नूं, सारे उन्हां दे
3: केंद्रीय रेल राज मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू ने अनुसूचित जातां बारे अपने हालिया विवादित बयान नूं लैके सफाई दित्ती है ते सर्वजनक तौर ते माफी मंगी है। अमृतसर हवाई अड्डे ते मीडिया नाल गलबात करदे श्री बिट्टू ने कहा कि उन्होंने मूँह चो निकले कुछ शब्दों कारण जे किसी भाईचारे के लोगों को ठेस पहुंची है तो वह दिलों अफसोस प्रगट करते हैं ते अजिही सावधानी वरतणगे कि भविख विच अजिही गलती दुबारा ना होए।
5: गल सिर्फ इन्नी हुई जदों एड्डी बड़ी बहस चल रही सी ते उस वेले जिहड़े लफ्ज़ निकले पर वह लफ्ज़ ने जिहड़े वह बिल्कुल मैनू नहीं कहने चाहिए सी। मैं उन्हां तों भी माफ़ी मंगदा कि कोई भी मन च ऐसी गल कदे आउणी नहीं चाहिए ते मैं यह भी कोशिश करूँगा अगली बार भी एक कदे भी इह जी गल होवे ना।
3: उन्होंने कहा कि जे कोई कमीशन या संबंधित अथॉरिटी उन्होंने तलब करती है तो वह आप हाजिर होकर अपना पक्ष रखणगे ते लोड़ पैण ते लिखती रूप में माफ़ी भी मंगणगे। मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी एससी ओबीसी हिंदू सिख या किसी होर वर्ग को नीवा दिखाने की कोई इरादा नहीं सी। पंजाब की कानून व्यवस्था बारे गल करदे रणजीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राज विच गैंगस्टरवाद ते अपराधिक गतिविधियां चिंता का कारण ने। पंजाब राज अनुसूचित जाति कमिशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गड़ी ने अज फिलौर इलाके के वक् वक् पिंडां दा दौरा किया। उन्होंने पिंडां दे समूह भाईचारे के लोगों दीयां मुश्किलां ते मंगां सुणियां ते मौके ते संबंधित अधिकारियों जल्दी तो जल्दी ढुकवां हल करन दे निर्देश दिते। श्री गड़ी ने कहा कि यह दौरा समुचे भाईचारे के हित विच कीता गया तां जो प्रशासन नाल तालमेल करके उन्हां दीयां समस्यावां दा योग हल कीता जा सके। तंबाकू के खतरों विरुद्ध जागरूकता पैदा करने लिए आज विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विश्व सेहत संगठन वालों तंबाकू की वरतों खत्म करने लिए एक विश्वव्यापी पहल है। इस दौरान भारत सरकार के सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय वालों करवाए गए कौमी परिवारक सेहत सर्वेखण 2023-24 अनुसार पंजाब ने देश भर चो तंबाकू सेवन के सब तो घट मामलों नाल जनतक सेहत में एक महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दस्या कि देशव्यापी व्यापक सर्वेखण पंजाब नूं सारे राज्यां विचों स्पष्ट तौर ते सिखरले स्थान ते स्थापित करदिआं विश्वव्यापी तंबाकू विरोधी मुहिम लई एक असरदार खाका पेश करदा है। दसणयोग है कि सूबे विच 15 साल अते इस तों वध उमर दे पुरशां विच तंबाकू की वरतों हुण तक दी सब तों घट सिर्फ 13.9% दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 36.3% दे अधे तों भी घट है। औरतों के मामले में स्थिति होर भी बेहतर है। पंजाब में 15 साल ते इस तों वध उमर दीआं औरतों में तंबाकू की वरतों सिर्फ 0.5% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 8.4% नालों काफ़ी घट है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अज कपूरथला का दौरा किया। अपने दौरे दौरान उन्होंने शेखपुर के माता भद्रकाली मंदिर में मत्था टेकया ते सूबे की खुशहाली लई पूजा की। इस तो बाद उन्होंने सीनियर बीजेपी नेता पुरशोत्तम पासी के निवास स्थान पर एक प्रैस कानफ्रेंस में संबोधन किया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शामी 6:30 बजे

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। शाम के 6:30 होए ने। पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजय, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, FM 102.7 मेगा हर्ट्स, DTH दी AIR पंजाब सेवा, DRM 864 किलो हर्ट्स, 103.6 मेगा हर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगा हर्ट्स अते 100.8 मेगा हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। पेश करदे हां मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर। आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाणा ते पटियाला केंद्र भी ए प्रसारण नालों नाल करनगे।
5: नमस्कार, मन की बात विच एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़ के मैनूं बहुत खुशी हो रही है। देश दे वख-वख हिस्सियां विच साडे देश दे लोक देश दे हित लई, समाज दे हित लई अजिहियां अनोखियां चीज़ां कर रहे ने, ते जदों उन्हां दे बारे सुणदे हां तां सानूं एक नवीं प्रेरणा मिलती है।

0: ज्यादा प्रचलित चीज है वो है वेपिंग, जो कि यूथ दे विच, जो साड़ी नौजवान पीढ़ी है उहदे विच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और यूथ नू पता भी नहीं है कि किस तरीके दे नाल जिहड़ी वेपिंग है, जो कि वक्रे वक्रे फ्लेवर्स दे विच मौजूद है, और इंडस्ट्री बहुत ही स्मार्टली उहनू बहुत कॉमन कर चुकी है, वो किस तरीके दे नाल साड़ी सेहत वास्ते किन्नी हानिकारक है। टोबैको दी जे आपां गल करिए, सानू सब नू लगता है कि टोबैको दे नाल जिहड़ा हैगा है वो लंग्स का कैंसर हुंदा है, पर एदां नहीं है। टोबैको साडी बॉडी दे विच कोई भी इस तरीके दा साडा सिस्टम नहीं है जिन्हों प्रभावित ना करता होवे। जिद्दां मैं वेपिंग दी गल कीती, उदां ही टोबैको दे पाउचेस भी अजकल जिहड़े मार्केट दे विच मिलदे है, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स दे नाम तो बहुत इजीली अवेलेबल है। और सब तो वड्डी गल है हैगी है, जो कि दुख वाली गल भी है और एक तरीके नाल उहनू देख के हंसी भी आउंदी है, कि कोई भी टोबैको प्रोडक्ट दे उत्ते जिहड़ा वार्निंग तो बगैर नहीं आंदी, पर फिर भी आपां वार्निंग पढ़ के भी, वार्निंग हुंदी है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, उहनू देखदे हुए भी आपां उहदा यूज जिहड़ा हैगा वो बड़ा कॉमनली हो रिहा हैगा। सो मैं जो पाउचेस दी गल कर रही सीगी, उहनू मुंह च रख के जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, सो ओदे नाल ओरल कैंसर जिहड़ा हैगा वो होने का जिहड़ा खतरा हैगा वो कई गुणा वध जाता हैगा। इहदे नाल नाल बाकी भी जिहड़ी साडी ओरल हेल्थ हुंदी है, मीन साडे मुंह दी जिहड़ी देखभाल हुंदी है, वो सारी तरीके नाल खराब हो जाती है। दंदा दा झड़ना, दंदा दे रोग, जीभ दे रोग, मुंह दे बाकी किस्म दे रोग। ओहदे बाद जे आपां गल करिए पेट दे जिन्ने भी रोग हुंदे ने, ओहदे विच जिहड़ा हैगा खाने दा प्रॉपरली ना पच पाना, ये भी टोबैको दे कारण हुंदा हैगा। लंग्स दा ते सानू सारिआं नू ही पता है, लंग्स दे कैंसर दा जिहड़ा एक प्रमुख कारण हैगा वो टोबैको हैगा। इहदे नाल नाल एक ये भी सानू सारिआं नू पता होना चाहिदा है कि टीबी भी उहनां नू ज्यादा अटैक करदी है जिन्हां नू जो कि टोबैको दा यूज करदे, जो सिगरेट पींदे ने या टोबैको नू किसी भी तरीके नाल अपने शरीर दे अंदर उहदा सेवन करदे ने। इस तों अलावा जे आपां गल करिए हार्ट दी, दिल दे रोगां दे विच भी टोबैको दा बहुत वड्डा रोल हुंदा है, क्योंकि टोबैको यूज दे नाल जिहड़ी साडे दिल दीआं जिहड़ीआं नाड़ां हुंदीआं उह सिकुड़ जांदीआं, जिहड़ा साडे बॉडी दे विच ब्लड दा फ्लो हुंदा है उह जिहड़ा उह सारा गड़बड़ा जांदा हैगा। उहदे नाल बाकी भी जिहड़ी साडी हेल्थ दीआं कॉम्प्लीकेशनस ने उह आंदीआं ने। इस तों अलावा जे आपां गल करिए अजकल बहुत कॉमन है बांझपन, इनफर्टिलिटी मेल्स च ते फीमेल्स च, मीन्स बंदियां ते औरतां दोवां दे विच। और इनफर्टिलिटी दा एक बहुत मुख्य कारण जिहड़ा हैगा है, बंदियां च ते औरतां दे विच टोबैको दा सेवन बहुत ज्यादा वध चुकिआ है, जिहदे करके इनफर्टिलिटी दे केसेस भी बहुत वध रहे ने। इहदे नाल नाल लिवर दा खराब होना उहदा भी एक प्रमुख कारण जिहड़ा है टोबैको है। टोबैको साडे शरीर नूं हर तरीके नाल प्रभावित करदा है, और इनू छड़ना ही सेहतमंद जिंदगी दे वल चलन दा एक तरीका हैगा है। सो अज वर्ल्ड नो टोबैको डे दे उते मैं सारिआं नू अपील करांगी कि इस बुरी आदत नू जरूर छड़ो, क्योंकि ऐ तुहाडी सेहत नू हर तरीके दे नाल खराब कर रहा है।
1: मैं डॉक्टर मुकेश वालिया जलंधर तो। हर साल 31 मई नूं दुनिया दे विच नो टोबाकू डे अवेयरनेस डे मनाया जांदा है। इस दा मतलब है कि असी सारे जाने समाज दे विच दुनिया दे विच लोकां नूं जागरूक करदे हां कि तंबाकू दा सेवन नहीं करना, तंबाकू दी वरतों नहीं करनी। तंबाकू दी वरतों क्यों नहीं करनी, ए एक बहुत ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਮਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਟਕਾ, ਫੈਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜੀਭ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦਾ, ਗਲੇ ਦਾ, ਪੇਟ ਦਾ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। 8:45 होने जा रहे ने। कुछ ही पलां सुनांगे समाचार संध्या साडे दिल्ली केंद्र तो। 9 बजे न्यूज़ एट 9 सुनोगे ते 9:15 ते स्पोटलाइट प्रोग्राम होएगा। 9:30 बजे अनुगूंज प्रोग्राम होएगा ते 10 बजे ही दिल्ली केंद्र तो रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा प्रोग्राम तुसी सुनोगे। 8:45 हो रहे ने। दिल्ली केंद्र तो कुछ ही पलां सुनोगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि

गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है।

0: सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने

0: कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing

0: is Delhi. Please stand by for our next program.
1: This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई, लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार आता, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना।
3: छोड़ दो। देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाऊंगी। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सही है,

0: हमने अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती थी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
0: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूँ समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है। यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
2: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
0: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर

0: मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
2: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
0: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्याल रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे, और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
2: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है पर जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।

श्रोताओ, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

बैजूबावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You were listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वे ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया इज ए रिनाउंड सैक्सोफोन आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री जी वेंकटरमणा। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर श्री कल्लूरी मल्लैया and earned recognition as an A-grade artist of Akashvani Kadapa. He has performed extensively across

0: India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
0: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इज एकंपनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नू कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नू कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पटनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: You are now listening to the saxophone recital by Sri Asnapur Puyaraya in the Ravivasari Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. Sri Eraya next presents Samagana Priyakaram, a composition of Guru Sujananda in Rag Kiravani, set to Misra Chaputal.

0: श्री यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकटरमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकटरमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग बृंदावन सारंगा, सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन, दोनों पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। दिस प्रोग्राम was recorded in the studios of Akashwani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वाला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए।

0: इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
3: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myin Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar

जी दोस्तों, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया नशा। और नशा ये भी एक नशा है, इश्क दा नशा। और इश्क दा नशा जदों हो जाता है ना, उदों इंसान फिर ते उस दूसरे नशे नू बिल्कुल भी भुल जाता है। तो तुसी उस मुर्शद दे नाल भी नशा इश्क

0: जी दोस्तों, टूट जाए रेल गड्डी, चैन रोक लिया चैन मेरा, क्या बात है जी। वैसे तो जी देखो, ये रेल गड्डी है ना, कईयों नू लै जांदी है जदों, तो फिर इंसान रेल गड्डी नू देखता जाता है कि मेरे मियाँ जी उस गड्डी च बैठ के सफ़र कर रहे हैं, और ये रेल गड्डी जिहड़ी है मेरे मियाँ जी नू दूर लैके जा रही है। क्या बात है जी, ये गल सही है। खैर जी, प्रोग्राम सौगात चल रहा है, और सौगात प्रोग्राम च तुसीं वी आ सकदे हो, जिवें साडे कॉलर आए ने। हैलो
1: हेलो वीर जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सुखबीर सिंह छाजली वाला बोलता मेरे सिंह। ठीक
0: वाह जी वाह, छाजली वाले हो, की हाल चाल ने?
1: है जी, वधिया। तुसीं दस्सो, ठीक हो जी?
0: बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। छाजली वाले बहुत चिर बार साडे को गेड़ा मारिया
1: हाँ जी हाँ, चलो भाई साहब आए ने, कर लाना यार। ठीक है, नींद आए ने कई वारी, थके थके होंगे।
0: हाँ, ये तो गल सही है जी, चलो ये भी
1: घर दे
0: जरूरी है।
1: काम होंदे ने जी, बाहर दे काम होंदे ने, कोई रिश्तेदारी जी जाना है, कोई होर तरह की समान, सौ पासे नूं पता साडे सदा जी हुंदा जी, सौ पासे
0: बिल्कुल
1: हथ पते मारने पैंदे ने।
0: पेंदे है जी, पेंदे है। देखो जी, तुसीं ये काम करोगे तां ही तां

0: जी दोस्तों, कुड़ी मर्दी है तेरी थी, तू थोड़ा जाता मरिया कर। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत गीत। और साढ़े दोस्त आए सन पर चले गए, पर हुन नवे दोस्त आ गए ने। देखिए जी केड़े दोस्त ने। हेलो
1: हेलो, नमस्कार। श्याम शर्मा जी,
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रही हूँ?
1: श्री गुरु रविदास नगर मरोड़ तो फकीर रस नहीं आई।
0: वाह जी वाह, रस रस रस गनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: तो ही बहुत थैंक यू साड़ी कार रिसीव करने वास्ते जी।
0: वाह रसगनिया जी, पहुंच गए तुसी साडे इस
1: हाँ जी
0: प्रोग्राम दे विच।
1: हाँ जी हाँ जी, पहुंच गया जी।
0: लो फिर, पिछली बार तो तुहाडी खैर मेरे को लगदा कि गैर हाजरी सी।
1: बाहर गए चले किसी काम ताई,
0: चलो
1: काम फिर तुहानू पता, फिर तुहाडी भी गैर हाजिरी कई बार लग जाती होंगी है संडे, पर काम
0: आए
1: घर तो
0: हैं,
1: करना ही पैंदी है शर्मा जी।
0: बिल्कुल तुसी सीप लाती है
1: हाँ जी
0: साडी है अज। फिर
1: हाँ जी,
0: तुसी सीप ला दित्ती है साडी।
1: कोई नहीं, कोई भरा भरावान ही लाउंदे ही होंगे है जी। हाँ जी, आपका
0: बिल्कुल।
1: करके दिन ना, और किसी का थोड़ा पला मांगे।
0: चलो आज फिर मैं गल कर रहा सीगा रसगनिया साहब कि इंसान नू नशा जे करना तो संगीत दा कर लो, प्लांटेशन दा कर लो, इश्क दा नशा कर लो, पर तंबाकू दा नशा नहीं करना चाहिए जेड़ा कि आज वर्ल्ड तंबाकू डे मनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल, थोड़ी से सियानी गल है। वैसे तंबाकू तो बहुत मतलब हानिकारक पदार्थ है जी। हाँ जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये और कोई नशा मतलब जिवें कहिंदे दुध दा नशा कर लो,
0: आय
1: घ्यो दा
0: हाय
1: नशा
0: हाय,
1: कर लो,
0: क्या ही
1: हाँ जी
0: बात है जी, बिल्कुल।
1: मक्खन दा नशा कर लो,
0: आय हाय हाय
1: आए हाय। हाँ जी
0: हाय,
1: जी
0: ये तुसी तां अलग ही नज़ारे दवाते, अज मक्खन दा भी नशा करवाता, दुध दा नशा भी करवा दिता
1: अच्छा, जिवें
0: है।
1: ओहदे

क्या बात है जी, खूबसूरत गीत। मैनू तेरा शबाब लै बैठा, रंग गोरा गुलाब लै बैठा। खूबसूरत शिव कुमार बटालवी दे ये अल्फाज और गीत जिहड़े जिसकी आवाज़ सी वो आसा सिंह मस्ताना, बहुत ही खूबसूरत सुमेल, बहुत खूबसूरत कॉम्बीनेशन दे नाल आपां ये गीत सुन रहे सी। ते लो जी फिर अगले कॉलर वल चलते हैं जी। साढ़े दोस्त पहुँचे ने, देखिए जी कि दोस्त ने। हैलो हैलो हैलो हैलो लो जी फिर आए तो चले गए। चौधरी जुल्फिकार अली चक लालिका बहावल नगर तो साढ़े दोस्त ने जिन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया है, कहते जी कि शाम जी कैसे हैं आप, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज लाजवाब है, आपसे गुजारिश है कि बस आप हमारे मैसेज जल्दी जल्दी शामिल कर लिया करें, मेहरबानी होगी। तो गीत कहते जी हमें कोई भी सुना दें। वाजिबा, बहुत बहुत शुक्रिया जी जुल्फिकार साहब, चौधरी साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिंड हीरावाली जिला फाजिलका तो सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा लिखते हैं जी, सत श्री अकाल शाम जी, सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम कहते जी लाइव सुन रहे हैं, वाह जी वाह, लाइव सुन रहे हो तो असं लाइव ही पेश करते हैं जी, थोड़ा बहुत शुक्रिया जी। और कहते जी अज तुसी तंबाकू दे लई गल कीती है, वाकई जी बहुत नुकसानदायक चीज़ है, तो इस तो सब नू बच के रहना चाहिए। बिल्कुल जी, तुसी साढ़े इस विषय से झात पुआई है, तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मरेलकोटला तो साढ़े दोस्त ने जी रमन अरोड़ा, तो कहते जी कि हरभजन मान की आवाज़ के गीत सुना दिओ। बिल्कुल जी, हरभजन मान की आवाज़ के गीत सुनाने हैं तुहानू, ते तुहाडे सारयां दा व्हाट्सएप करन दे लई, मैसेज करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। ते लो फिर तुहानू सुनाने हैं हरभजन मान ते उन्हां साथियां दी आवाज़ां दे विच ये गीत।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात इसी तरह जी चलता रहेगा 1 बजे तक। और जिन्हें दोस्तों ने हले तक कोशिश नहीं की है, जरूर कोशिश करो। 0181 2342 1 नंबर डायल करना है, 0181 2342 1 और जेडे दोस्त सू वट्सअप मैसेज करना चाहते हैं 9465530777 9465530777। लो जी कॉलर आए नहीं, देखिए जी दोस्त केड़े पहुँच गए ने। हैलो,
1: नमस्कार शर्मा जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: महेश गर्ग, मंडी हरजी राम मलोड़ तो।
0: जी जी महेश गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद जी।
0: महेश जी, तुसी प्रोग्राम च आने हो दा, प्रोग्राम चंगा लगता है।
1: हाँ जी,
0: ते गीत भी तुहाडे असी बजाने हैं, ते प्रोग्राम दे विच होर असी की वधिया वधिया कर सकते हैं, जरूर दस्या करो। बिलकुल जी, वैसे तो वर्गे स्रोते जो अलग अलग तरह के हट के गीत लवा

0: जी दोस्तों, बिल्कुल इश्क दियां गल्लां हो रही हैं, क्योंकि आज असीं यही कह रहे हैं ना कि जे तुसीं नशा करना है, इश्क दा नशा कर लो, प्यार मुहब्बत दा नशा कर लो, किसी किताब पढ़न दा नशा कर लो, संगीत दा नशा कर लो, खाण पीण दा नशा कर लो, लेकिन भैड़ा नशा बिल्कुल कोई ना करो। लो जी, कॉलर आए नहीं, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? जी राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू जी।
0: राम प्रसाद जी, अज असीं गल कर रहे हैं कि इंसान नूं नशा जिहड़ा है वह किसी भी तरह का नहीं करना चाहिए। जे नशा करना है तो तुसीं उन्हां चीज़ां दा करो जिस दे नाल। वाह जी वाह।
1: दो तीन आ गया। तमाकू तो सेव बड़ा कर दिया। जो मैं समझाना तो एक जवाब रखा तो अगला मजाक समझे। कहते जो खाते जड़दा कदी नहीं मरते। मैं क्या जो खाते जड़दा तड़प तड़प के मरते।
0: वाह जी वाह, क्या ही बात है, बिल्कुल सही कहा।
1: जवाब दिता भी जो अब्बल से जो मरना ना फिर तड़प तड़प के मरते।
0: देखो ना, फिर मुंह भी तुसी खराब कर लेना, तुहाडे अंदर रोटी भी नहीं लंघनी।
1: हां जी हां जी, ओही ते मैं कह रहा। भी तुम देखो मेरे कुछ मेरे दोस्त ही है, मेरे ब्रदर की पूछ।

0: जी दोस्तों, तू भी रह गया अधूरा, मैं भी रह गई अधूरी, क्या बात है जी। की खटिया मैं तेरी हीर बन के। प्रोग्राम सौगात चल रहा जी, सौगात प्रोग्राम च तुसी भी आ सकते हो। 20 मिनट की टाइम रह गया और तुसी 20 मिनट च हाजरी लगवानी है जिन्हें दोस्तों ने हाले तक साढ़े तक पहुँच नहीं की है। लो जी कॉलर आ गए, देखिए जी। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल सर
0: जी। जी सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़।
0: राजू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी स्वागत है जी।
0: की गल, नींद आ गई सी या वैसे ही?
1: ना जी, 11 बज के लगे होना।
0: अच्छा पौने 2 घंटे हो गए ट्राई मार दिया नू।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: यही हुंदा जी, देखो जड़ा मैं नशे की गल कर रहा सी ना जी, ये नशा है जड़ा अपन नु करना चाहिदा।
1: हाँ जी हाँ, काम दा नशा करना, चंगे काम दा नशा करो जी।
0: हाँ, चंगे काम दा नशा करो, साडे आकाशवाणी जलंधर नाल नशा करो।
1: हाँ, गुस्सा मारो सर जी, गुस्सा मार दे नशा करो।
0: हाँ, क्या बात है जी, क्या बात है।
1: हाँ जी,
0: बहुत खूबसूरत गल की है जी। जे काम दा नशा कर लिया ना, फिर तो इंसान तर जूगा।
1: हाँ जी हाँ, गुस्सा मारने दा नशा करो,
0: गुस्सा भी खत्म कर लो। बहुत वधिया जी। राजू जी केड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: सतिंदर सरताज दा गीत सुनाई
0: गई। लो जी सुनाने हैं तुहानू सतिंदर सरताज दी आवाज दे विच गीत। शुक्रिया जी कॉल करन दे लई,
1: धन्यवाद जी तुहाडा।
0: लो जी, ये सन साडे दोस्त राजू जी, पौने 2 घंटे तो कोशिश कर रहे सन साडे तक पहुंचन दी, पर देखो ना जिथे नशे करन दी गल है, ये है नशा राजू जी ने जड़ा कीता कि साढ़े तक पहुँच बनाई उन्होंने और पहुँच भी गए साढ़े को। सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मनी, काका बिट्टू लाडी, इन्होंने सानू जनक नगर जलंधर तो वट्सएप मैसेज भी किया जी, वह भी असी शामिल कर लिया। तो होर साढ़े दोस्त जोड़े वट्सएप मैसेज कर रहे हैं, असं उन्होंने भी शामिल करा। तो सुखबीर छाजली वाले ने भी सानू मैसेज किया जी, इन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोमलप्रीत नाल ने और इन्हों का बेटा भी नाल है जिन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज किया। लो सुनते हैं सतिंदर सरताज की आवाज़ के गीत।

0: जी दोस्तों, सचमुच सज्जन राजी हो जाए तो रौला नहीं पाईदा। इश्क हुंदा हीरियां वर्गा, इसनूं संभाल के रखना चाहिए। पर इश्क उही गल हो रही ना कि अज ये जिहड़ा वर्ल्ड तंबाकू डे दे विच जिहड़ा लोग नशा करते हैं, इस नशे तो हट के जे तुसीं इश्क दा नशा कर लो, कम दा नशा कर लो, खाण पीण दा नशा कर लो, आकाशवाणी जलंधर दे नाल नशा कर लो, तो क्या ही बात है। जी लो, कॉलर आ गए ने, देखिए जी दोस्त केड़े ने। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सुधीर नूदान मैराथन करनाल से, बड़ा पुराना लिसनर आकाशवाणी जलंधर दा।
0: जी जी, सुधीर नूदान जी साडे पुराने लिसनर साडे तक पहुंचे ने, देखो 1 बजे तक साडे कोल बैठे हुए ने, ते किन्ना मोह, किन्ना इश्क, किन्ना नशा कर रहे ने साडे प्रोग्राम दा।
1: बिल्कुल, रोला नहीं पाईदा सज्जना।
0: रौला नहीं पाई।

पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साढ़ा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल साढ़ा पाया की तुमुल पाके प्यार गयो फुल।

मजा जिया जुबान विच कुछ बोल दे, बे मजा जिया जुबान विच कुछ बोल दे, बे मजा जिया जुबान।

जी दोस्तों, मजाजिया जुबान विचों कुछ बोलते ते इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच तुहानू गीत सुरजीत बिंदरखिया दा सुना रहे हैं। कोशिश तो साढ़े दोस्त कर रहे हैं साढ़े तक पहुँचने की, बैल आती है लेकिन फोन कट जाता है, पर खैर जी जेडे दोस्त कोशिश कर रहे हैं उन्होंने लिए सब दे लिए गीत।

तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी समग्र बाणी विच प्रभु दी सिफतो सलाह है, उस्तत है। सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच बेनती है, उस दे गुणा दा वर्णन है। प्रभु ते जन दा रिश्ता प्रभु ते सेवक दे रिश्ते वांग है, क्योंकि सच्ची सेवा प्रभु दे हुकम अनुसार उही जन कर सकते हैं जिड़े प्रभु दे हुकम मुताबक चलते ने। इतना ही संभव हुंदा है जदों ओ बेअंत गुणा दे स्वामी सर्व शक्तिमान सर्व व्यापक सर्व कला समर्थ अकाल पुरख प्रभु दे चरणा विच जोदड़ी करते हैं। राग वढ़हंस विच उचारित शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दासा भाव विच आके ए अरजोई करते हैं। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। सरवण करदे आं भाई प्रभजोत सिंह बाली ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: सेवक की अरदास प्यारे, जब जीवा प्रभ चरण तुम्हारे। इस शब्द अगायन कीता सी पाई प्रभजोत सिंह बाली ते उनदे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु दे हुकम नाल, अर्थात एक कवाओ दे नाल सृष्टि दा पसार हो गया। गुरबाणी विच बयानिया गया है, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। अर्थात इस सारा पसारा जिसनू बयान ही नहीं कीता जा सकता, ते इस सृष्टि दे पसार करन वाले दा अंत भी नहीं लख्या जा सकता। उस दे अग्गे तां नतमस्तक होना ही बनता है, ते यही कहना बनता है, तुमरा लखा न जाए पसारा। सुनदे हां सुखजीत सिंह हुरां पासों ए वार्ता।
1: संसार अंदर अनेकां धर्म हन, हरेक धर्म ने सृष्टि की उत्पत्ति कदों किवें होई दे बारे अपने अपने विचार दित्ते हन। सिख धर्म दे बानी गुरु नानक साहब ने इस संबंध विच दस्या है कि सब तो पहला परमेश्वर ने अपने आप नूं प्रकाशमान कीता, फिर परमेश्वर ने हवा पैदा कीती, हवा तों पाणी अते फिर पाणी तों वक्ख वक्ख तरां दे जीव जंतुआं दी पैदाइश आरंभ होई। श्री गुरु नानक देव जी वल्लों अज तों लगभग 500 साल पहला दित्ते गए इस सिद्धांत दी सच्चाई नूं विज्ञान वल्लों भी प्रमाणित कर दिता गया है। पहले पातशाह दे पावन बचन हन, साचे ते पवना पया, पवनै ते जल होए, जल ते तिर पवन साजिया, घट घट जोत समोए। सृष्टि दा पसारा कदों होया दे बारे विच वक्ख वक्ख समें ते साइंसदाना ने आपो अपनियां खोजां दे आधार ते दसण दा यतन कीता है, पर इस संबंध विच साइंसदान एक मत नहीं हो सके। जे कोई सृष्टि दी आरंभता दे समें नूं निश्चित करके दसण दा यतन करदा है तां होर कोई साइंसदान उस तों होर अगे जा के अपनी खोज द्वारा पहले नूं रद्द करदे होए नवी खोज विच बदल देंदा है। इस संबंध विच जदों असीं गुरबाणी दी रोशनी विच वेखदे हाँ तां श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब दी मुढ़ली बाणी जप विच ही स्पष्ट कर देंदे हन कि जेकर सृष्टि दी आरंभता दा समां सही रूप विच लब्भे जाण योग हुंदा तां हिंदू, इस्लाम, ईसाई, योग मत आदि दे पहलां ही रचे जा चुके पुराण, कुरान, बाइबल आदिक धर्म ग्रंथां विच इसदा जिक्र जरूर मिल जाना सी। गुरु साहिब तां बिना किसे ऐसे वाद विवाद विच पैण दे स्पष्ट करदे हन कि सृष्टि दी आरंभता कदों होई दे बारे जे सोचण लगीए तां बगैर हैरानी ते आश्चर्यता दे होर कुछ भी हथ नहीं आउंदा है।

0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत वाले पसारे नू प्रभु वल्लों किवें साजिया गया दे संबंध विच जदों असी गुरबाणी की रोशनी विच समझण दा जतन करदे हाँ तां साडे सामने हुक्मी होवण आकार हुक्म ना कहिया जाई हुक्मी होवण जी हुक्म मिलै वडियाई दे बचन आउंदे हन। इस विषय दे खोज मार्ग उपर चलदे चलदे साडी हैरानी हद्दां बन्ने पार कर जांदी है। इस अवस्था लई आसा की वार बाणी अंदर पहले पातशाह जी ने विस्माद शब्द वरत्या है। साहबां दे अमोलक बचन हन विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरें जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडें वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगें प्राणी। गुरु साहब कुदरत दी बेअंत विशालता दा लगातार होर वर्णन करदे होए इस श्लोक दी समाप्ति ते इस सारे पसारे संबंधी वेख विडान रहिया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग नाल सिद्धांत स्पष्ट करदे हन कि इस इलाही तमाशे नूं वड्डे भागां नाल ही समझिया जा सकता है। विशा अधीन विचार तो असी यही सिट्टा कढ सकते हाँ कि इस सारे पसारे नूं पसारन वाला अकाल पुरख आप बेअंत है। उस दे हुक्म नाल साजी हुई कुदरत भी बेअंत है। उस दी बेअंतता नूं पूर्ण रूप विच जानन दियां किसी भी तरह कोई दावेदारियां करन दी थां ते सानू भी गुरु नानक साहब दे पावन बचना अनुसार यही आखना बनता है कुदरत कवन कहां विचार वारिया न जावां एक वार जो तुद पावै साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार।
1: तुमरा लखा न जाए पसारा ये वार्ता सुना रहे सन सुखजीत सिंह। अकाल पुरख प्रभु सब तो वड्डा है अर्थात सिरमौर है स्याणा है दयानतदार है गल की अनेक गुण हैं जिड़े बयान ही नहीं कीते जा सकते। बस उस दी भजन बंदगी ते उस दे सेवा सिमरन दे विच ही आत्मिक सुख दी प्राप्ति हुंदी है। राग मारू विच उचारित शब्द विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने कि मैनू ऐसे प्रभु नू मिलन दी तांग है उस नू मिले बिना हिरदा व्याकुल है। तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा। सरवण करदे हां भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

तू दाना साहेब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। इस शब्द का गायन किया सी भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: संगत धन धन करहो जिह सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो।
1: गुर अमरदास परसिया पोहम पातक बेनास है, गुर अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसास है, गुर अमरदास परसिया ध्यान लहे पहो मुक है, गुर अमरदास परसिए पहो लबे गो चुक है, एक बिन दो गुण जो तो रहे जास मंत्र मान में लहे, जाल पाप दारथ इतड़ै गुर अमरदास डिठ मिल है।
2: जप तप सत संतोख पिख दर्श

द्वापरतपे का सातगिरथवा हु काल जुगरथगन का कूड़गिरथवा हु महला पहला शाम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब कुछ सास समावे रिक कह रहा परपूर राम नाम देवा मैं सूर नायले प्रात जाहे नारक तुम खंत्रपा जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै बिंद्रावन में रंकिया कल मह बेद अथर्बण हुआ ना उखदा ये लो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे त्रक उठानी अमलकिया चारे वेद होस चार पढ़ै गुण तन चार विचार पाओ पक्कर नी सदाए तो नानक मखंत्र पाए।